गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है 107 FM रेनबो पर। आरजे अंकित आपके साथ, और सुबह के हो चुके हैं 10:03, और मैं आपका दोस्त आ चुका हूं कार्यक्रम लेके नॉन स्टॉप गपशप रहने वाला हूं 11 बजे तक आपके साथ। लेकर आया हूं एक टॉपिक जहां पर करूंगा मैं आप लोगों से बात ही उस विषय पर। दोस्तों, गर्मी आ गई है जोर शोर से और हम सब भीग रहे हैं पसीने में, लेकिन मैं आज बात करूंगा गर्मी से राहत पाने के लिए किस तरह से आप पानी में डुबकी लगा और कौन कौन सी एक्टिविटीज करें ताकि आप गर्मी से राहत आपको मिल सके। तो पूरे कार्यक्रम में दोस्तों रहेंगी इस बारे में बातें, यानी कोलकाता कूल डाउन वेलनेस ट्रेंड्स की ओर रुख कर रहा है, इस बारे में करूंगा आज मैं अपने कार्यक्रम में पूरी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम इस पहले ट्रैक के साथ।

फिल्म यारियां से दोस्तों यो यो हनी सिंह और नेहा कक्कड़ की आवाज में सुन रहे थे। ये ट्रैक कंपोजिशन लिरिसिस्ट दोनों हनी सिंह की थी दोस्तों। भीषण गर्मी और उमस के बीच कोलकाता के लोग सक्रिय रहने के लिए ठंडे ठंडे तरीके अपना रहे हैं। स्विमिंग पूल में एक्वा जुम्बा से लेकर क्रायोथेरेपी चैम्बर और बर्फ में डुबकी लगाने तक फिटनेस को एक नया और ताजा रूप मिल रहा है। ये अनुभव गर्मी में राहत और जोश दोनों प्रदान करते हैं, जिसमें गर्मियों में वर्कआउट करना अधिक आकर्षक हो जाता है और लोग गर्मी से थकावट महसूस किए बिना सक्रिय रह पाते हैं।

कुछ कुछ लोचा ऐसे दोस्तों इक्का श्रद्धा पंडित और को लेकर आए थे ट्रैक इक्का और को इंटेंस का संगीत लिरिसिस्ट थे इक्का और को। कोल्ड थेरेपी मानसिक लचीलापन बढ़ाती है, यह आपको दबाव में शांत रहना, तनाव का प्रबंधन करना और असुविधा में तुरंत पीछे हटने के बजाय उसका सामना करना सिखाती है।

फिल्म दोस्ताना से। दोस्तों आप सुन रहे हैं तो सुनिधि चौहान की आवाज में ट्रैक विशाल शेखर का मोशन अनविता दत्त गुप्तन के थे। बोल 10:17 AM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ और कार्यक्रम चल नॉन स्टॉप गपशप आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर रहूंगा 11 बजे तक आपके साथ। और आज नॉन स्टॉप गपशप में दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ गर्मी में राहत पाने के लिए पानी में किस तरह से आप क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं वो तरीके बता रहा हूँ। यानी कोलकाता कूल डाउन वेलनेस ट्रेंड्स की और रुख कर रहा है और इस ट्रेंड्स के बारे में दोस्तों आज मैं कर रहा हूँ बातें आप लोगों से। बताता हूँ एक्वा जुम्बा के बारे में दोस्तों। एक्वा जुम्बा को शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त फिटनेस क्लास के रूप में डिजाइन किया गया था जिसमें तैरने के बजाय उथले पानी में संगीत पर नृत्य और गति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसलिए कोई भी इसमें शामिल हो सकता है।

फिल्म पठान से शिल्पा राव, कैरलिज़ा मॉन्टेरियो, विशाल शेखर लेकर आए थे ट्रक, विशाल शेखर का कंपोजिशन कुमार के थे बोल। क्रायोथेरेपी के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण में दोस्तों इंसुलेटेड मोजे, चप्पले, अंडर गारमेंट्स, दस्ताने और फ्रोस्ट वाइट से बचने के लिए फेस मास्क या हेयर बैंड शामिल है।

फिल्म स्ट्रीट डांसर से बादशाह नेहा कक्कड़ लेकर आए थे ट्रैक। कंपोजिशन लिरिसिस्ट दोनों ही बादशाह की थी दोस्तों। क्रायोथेरेपी 3 मिनट तक चलती है, लेकिन इससे शरीर को तुरंत ताजगी मिलती है। अत्यधिक ठंड शरीर को सुरक्षात्मक अवस्था में ले जाती है, जिससे रक्त महत्वपूर्ण अंगों की ओर प्रभावित होता है, सूजन कम होती है और रक्त संचार सक्रिय होता है। शहर के एक वेलनेस स्टूडियो के संस्थापक कहते हैं कि जैसे ही आप स्टूडियो से बाहर निकलते हैं, ताजा ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर में वापस आ जाता है, जिससे आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। ये मांसपेशियों को ठीक होने में मदद करता है, तुरंत ठंडक प्रदान करता है और मूड और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। दोस्तों आइए मैं भी आपके मूड को चेंज करूं इस अगले ट्रैक के साथ।

0: अरिजीत सिंह, शिल्पा राव की आवाज में। दोस्तों आप सुन रहे थे ट्रैक फिल्म वॉर से, विशाल शेखर कंपोजिशन, कुमार के थे बोल। अगर वर्कआउट करना अच्छा लगता है दोस्तों, तो इस भीषण गर्मी में असंभव लगने वाला एक वॉक जुम्बा तक ताजगी भरा एहसास देता है। इसे पूल में एक डांस पार्टी की तरह समझिए। जोशीला संगीत, सरल नृत्य और खूब सारा पानी उछालना। पानी आपके शरीर को ठंडा रखता है और साथ ही प्रतिरोध भी प्रदान करता है, जिससे आप बिना थके कैलोरी बर्न कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गर्मी थका देने वाली होती है। एक्वा जुम्बा इसे पूरी तरह से बदल देता है। पानी में होने से सेंसेशन हल्का, अधिक ताजगी भरा और आनंददायक हो जाता है। सभी आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है और जोड़ों के लिए भी आरामदायक है। कमर तक पानी में नाचने से तुरंत मूड अच्छा हो जाता है, आपका शरीर हल्का और अधिक स्वतंत्र महसूस होता है। और 10:31 एम हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ, कार्यक्रम चला नॉनस्टॉप गपशप आपके अपने चैनल पर 107 FM रेनबो पर। रहूंगा 11 बजे तक आपके साथ, और आज बात कर रहा हूं मैं कि किस तरह से पानी में वर्कआउट करने से आपको गर्मी से मिलेगी राहत, और सुना रहा हूं बैक टू बैक बेहतरीन ट्रैक्स। आइए बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। FM रेनबो पर।

0: और ढेर सारे गाने आप सुन
1: दोस्तों सुन रहे थे फिल्म कॉकटेल से नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज में, ट्रैक प्रीतम का कंपोजिशन इरशाद कामिल के थे बोल। कल्पना कीजिए कि आप जानबूझकर जमा देने वाली ठंड में कदम रख रहे हैं और आपको ये अच्छा लग रहा है। क्रायोथेरेपी में शरीर को कुछ मिनटों के लिए एक विशेष कक्ष में बेहद ठंडी हवा के संपर्क में लाया जाता है। कई लोग मांसपेशियों के दर्द को कम करने, रक्त संचार को बढ़ाने और ऊर्जा स्तर में सुधार के लिए इसकी सराहना करते हैं। यह आपके बाद में शरीर में कैसे महसूस करता है, दर्द में कमी आपको महसूस कराता है, बेहतर रिकवरी कराता है और बेहतर रक्त संचार और तुरंत ऊर्जा का संचार भी कराता है। शरीर और मन को तरोताजा करने में मदद करते हैं और एक ताजगी भरा अनुभव प्रदान करता है। एथलीटों के बीच लोकप्रिय है और ये अब एक त्वरित स्वास्थ्य उपाय के रूप में ट्रेंड कर रहा है।

0: Come on, babe.
1: अनुषा मानी की आवाज दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्म थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक से। ट्रैक शंकर एहसान लॉय का था, संगीत और बोल लिखे थे प्रशून जोशी ने। आइए दोस्तों बात करते हैं बर्फ के स्नान पर। बर्फ के स्नान के लिए सुरक्षा सावधानियों को आवश्यकता होती, जैसे पानी का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखना, पानी में 2 से 15 मिनट से अधिक समय तक न रहना और पास में किसी साथी का होना एकदम अनिवार्य है दोस्तों।

हरीश सिंह और चिन्मय श्रीपदा की आवाज़ से दोस्तों आप सुन रहे थे टू स्टेट से। ये गीत संगीत से सजाया था शंकर एहसान लॉयल ने और बोल से सवारा था अमिताभ भट्टाचार्य ने। इंटरनेट पर आइस बाथ का क्रेज साफ तौर पर दिख रहा है। आइस वाटर प्लंज में कुछ देर के लिए खुद को बर्फीले ठंडे पानी में डुबाया जाता है। ये एक ऐसी चुनौती है जो शारीरिक होने के साथ साथ मानसिक भी है। हालांकि शुरुआती कुछ सेकंड चौंकाने वाले लग सकते हैं, लेकिन कई लोग इसके बाद मिलने वाले सुकून का बेजोड़ अनुभव बताते हैं। माना जाता है कि ठंडे पानी के संपर्क में आने से रक्त संचार बेहतर होता है, तनाव कम होता है और आप घंटों तक ऊर्जावान महसूस करते हैं। ये थोड़ा ऐसा जरूर है, लेकिन साथ ही अजीब की तरह के शक्ति प्रदान करने वाला है। मानो आपको दिमाग और शरीर को एक तरह से रीसेट कर दिया गया हो।

फिल्म बर्फी से दोस्तों श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज लेकर आए थे ट्रैक पीतम का संगीत स्वनंद किरकिरे के बोल। और देखते ही देखते दोस्तों हम पहुंच चुके हमारे कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर। और थोड़ी सी जानकारी और आपको दे दूं कि बर्फ में डुबकी लगाने से गर्मी से तुरंत राहत मिलती है और साथ ही तनाव और थकान भी कम होता है। अचानक ठंड लगने से सतर्कता बढ़ती है और समय के साथ मानसिक मजबूती आती है। पहली प्रतिक्रिया हमेशा प्रतिरोध का होती है। आपका शरीर गर्मी और राहत चाहता है, लेकिन अगर आप शांत रहें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और उस झटके से उबर जाए तो यह ठंड के बारे में कम और नियंत्रण के बारे में अधिक हो जाता है। वहां आगे कहते हैं नियमित कोल्ड थेरेपी आपको दबाव में शांत रहने, तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और असुविधा से तुरंत पीछे हटने के बजाय उसका सामना करने में मदद करती है। और साथ ही दोस्तों अगर एक्वा जुम्बा की बात करें तो गर्मियों के मौसम में एक्वा जुम्बा बहुत लोकप्रिय है। पानी आपके शरीर को हिलने डुलने के दौरान भी ठंडा रखता है, साथ ही बिना ज़्यादा पसीना बहाए या थकावट के अच्छे कार्डियो एक्सरसाइज भी देता है। ये घुटनों और जोड़ों के लिए आरामदायक है, इसलिए हर उम्र के लोग इसे कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी वर्कआउट जैसा नहीं बल्कि एक मजेदार पूल पार्टी जैसा लगता है। हल्का खाना खाएं और पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। 60 से 90 मिनट पहले हल्का भोजन करें, आरामदायक स्विम सूट पहने और पूल में रहने पर भी सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। बढ़ेंगे दोस्तों कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ। आखिरी गीत होगा फिल्म जब तक है जान से रब्बी की आवाज में, और इसी ट्रैक के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत। मिलूंगा फिर आप लोगों से मैं कुछ दिनों बाद। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अ वेरी हैप्पी वीकेंड। सुनते रहे साथ रहे 107 FM रेनबो। और अगला कार्यक्रम होगा इस ट्रैक के बाद थोड़ी देर में आप लोगों के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए 107 FM रेनबो पर।

इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही।

107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 3:03:27। आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकली यॉर्स पर कार्यक्रम परियोजना प्रस्तुति। और दोस्तों, आज परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत हम बातें करेंगे प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के विषय में। दोस्तों, आज के समय में बीमारी से ज्यादा चिंता दवाइयों के बढ़ते खर्च की होती है और कई परिवार ऐसे हैं जो महंगी दवाइयों के कारण सही इलाज करने में नाकाम हो जाते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने शुरू की प्रधानमंत्री

0: औषधि योजना, और इस योजना का उद्देश्य है देश के हर नागरिक को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराना। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाइयां जेनरिक मेडिसिन होती हैं। जेनरिक दवाइयां वही काम करती हैं जो महंगी ब्रांडेड दवाइयां करती हैं, लेकिन उनकी कीमत बहुत कम होती है। और इस चीज़ का अगर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो जो दवाएं बाजार में 100 रुपए की मिलती हैं, वही दवाएं जन औषधि केंद्र पर 20 या 30 रुपए में मिल सकती हैं। इससे आम जनता को बहुत ही राहत मिलती है। और इस योजना की शुरुआत की अगर बात की जाए तो ये योजना शुरू हुई थी साल 2008 में, और उसके बाद इसे और अधिक प्रभावी बनाया गया। आज देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं जहां सस्ती दवाइयां उपलब्ध हैं। इन केंद्रों पर केवल सामान्य दवाइयां ही नहीं बल्कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, महिलाओं और बच्चों से जुड़ी दवाइयां भी उपलब्ध होती हैं। इस योजना का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये योजना रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। कोई भी योग्य व्यक्ति जन औषधि केंद्र खोल सकता है और समाज सेवा के साथ रोजगार भी प्राप्त कर सकता है। सरकार का उद्देश्य है कि देश का हर नागरिक बिना आर्थिक बोझ का के इलाज करा सके, और स्वस्थ भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर व्यक्ति सस्ती और अच्छी चिकित्सा को ग्रहण कर सके, उनका फ़ायदा उठा सके। तो ये खास बात ध्यान में रखते हुए ही इस योजना की शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की। और इससे आज के समय में अब तक लोगों ने बहुत सारे लाभ उठा चुके हैं। तो दोस्तों, फिलहाल परियोजना प्रस्तुति में आज बस इतना ही।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।

इरशाद कामिल के बोलों के साथ शाश्वत सचदेव की कंपोजिशन और आवाज अरिजीत सिंह अरमान खान की आप सुन रहे थे इस गीत को फिल्म धुरंधर से। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3:12 और 50 सेकंड है स्टूडियो की घड़ी में समय, यानी कि आप सभी का स्वागत हो चुका है कार्यक्रम 3 का तड़का में, जहां पर तड़का लगाने आ गई हूं मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका लेकर कार्यक्रम को, और साथ ही आपके लिए कई बेहतरीन गीतों के नजराने हैं हमारे पास, तो सुनते रहें 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकल योर्स।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

दोस्तों अभी अभी आप सुन रहे थे फिल्म जिंदगी 50-50 से, ये खूबसूरत सा तराना और ये जो गीत था इस गीत में आवाज़ थी रेखा भारद्वाज की। और दोस्तों बेहतरीन तराने जो हैं वो तीन का तड़का की शान होते हैं। और फिलहाल शनिवार की दोपहर में आप सभी को इस बहुत ही बेहद गर्मी में कुछ सूदिंग सॉन्ग सुना रही हूँ मैं आपके दोस्त और होस्ट देविका। और दोस्तों फिलहाल आप सभी के लिए एक और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा तराना, फिल्म का नाम लाल सिंह चड्ढा।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

दोस्तों अभी अभी आप सुन रहे थे इस गीत को फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। और ये जो गीत था, इस गीत में जो बात कही गई है वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी बाहर का मौसम भी कुछ ऐसा ही है। हमारी जो जिंदगी है वो सूरज की बाहों में है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और ऐसी गर्मी में बस मन करता है कुछ बेहतरीन तराने सुने, और ढेर सारा पानी पीने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी ऐसे ही मौसम में होता है। तो आप सभी को भी संभल कर ये सारी चीजें ध्यान में रखना है, और खान पान का विशेष ध्यान, खास ध्यान जो है वो

ये फ्राइड फूड जो है ये हमारी हेल्थ पर डायरेक्ट बहुत ही बुरा इफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल तो इफेक्ट की बात नहीं कहूंगी, ये जो अगला गीत है इस गीत के इफेक्ट की बात कहूंगी। आइए सुनते हैं आज का अगला तराना अरिजीत सिंह के साथ निकिता गांधी की आवाज में। फिल्म का नाम है केदारनाथ।

वेल फ्रेंड्स, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 3:40 और काफिराना ये गीत आप सुन रहे थे केदारनाथ फिल्म से। फिल्म बहुत ही बेहतरीन और सुशांत सिंह राजपूत के साथ नजर आई थी सारा अली खान इस फिल्म में और इस फिल्म के साथ उन्होंने किया था डेब्यू भी। लेकिन ये जो रोमांटिक तराना है काफिराना, ये बेहद ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत सा एक तराना है। तो फिलहाल दोस्तों, गीतों की जब बात छिड़ती है तो आज के दिन सैटरडे के दिन सभी का मन करता है कि थोड़ी सी जो पार्टी स्टाइल म्यूजिक है वो प्ले की जाए। तो फिलहाल आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का अगला तराना, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से ये गीत।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। रेनबो पर, रेनबो पर।

दोस्तों, अभी अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत, और ये गीत था फिल्म क्रीचर से। जी हाँ, वही फिल्म जिसमें बिपाशा बासु नजर आई थी, और ये फिल्म थी एक खास विषय को लेकर, थोड़ी सी हॉरर की टच के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस, बहुत सारी ऐसी बातें भी थी जो पुराणों में, जो ग्रंथों में लिखी गई हैं, और इन ग्रंथों की बातों को लेते हुए ब्रह्म राक्षस की बातें भी बताई गई थी इस फिल्म। और ये जो गीत था, इस गीत का पिक्चराइजेशन बहुत ही खूब

0: खूबसूरत था। और इस गर्मी के मौसम में थोड़ी सी बारिश अगर हो जाए दोस्तों, तो हम सभी का मन भी बहुत ही आनंदित हो जाएगा, ये बात तो बिल्कुल सच है। फिलहाल आप सभी के लिए आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुनेंगे, इस गीत को भी अरिजीत सिंह की ही आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म ए दिल है मुश्किल से टाइटल ट्रैक, जिसे सुनते सुनते दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट देविका को इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात 7:02 पर छायालोक में, लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए ये गीत और गीत के ठीक उस बार अगला कार्यक्रम कर रहा है आप ही का इंतजार।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।

0: Tele Lawyer app, website www.tele-law.in অথবা টোল ফ্রি নাম্বার 14454 এর মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা লাভ করা সম্ভব।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
2: जाने अनजाने

0: जवानी।
1: बेहद बेहतरीन इस तराने के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल इयर्स पर। आप सुन रही हैं कार्यक्रम छायालोक, लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका। और फिलहाल आप सभी को बता दें कि आज यानी शनिवार की शाम का सेगमेंट आप सभी के लिए प्रस्तुत है जाने अनजाने। फिलहाल अभी आप सुन रहे थे इस गीत को फिल्म प्रेम रतन धन पायो से। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सा ये तराना आप सुन रहे थे दोस्तों। और आपको बता दें कि 107 एफएम रेनबो पर ये गीतों का सिलसिला, तरानों का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि छायालोक शुरू हो चुका है। और छायालोक के अंतर्गत आज आप सभी के लिए जो सेगमेंट आता है जाने अनजाने, इसमें हम लाते हैं बेहतरीन तराने और इन फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें भी। फिलहाल आप सभी को सुनाऊंगी आज के कार्यक्रम का अगला तराना। तो दोस्तों फिलहाल आप सभी सुनेंगे फिल्म का नाम ए दिल है मुश्किल, शिल्पा राव के साथ अमित मिश्रा की आवाज में। आइए सुनते हैं इस गीत को।

दोस्तों अभी अभी आप सुन रहे थे फिल्म ए दिल है मुश्किल से ये तराना, और इसमें आवाज थी अमित मिश्रा के साथ शिल्पा राव की। ऑन स्क्रीन इस गीत में नजर आए थे रणवीर कपूर के साथ, ऐश्वर्या राय ऑन स्क्रीन नजर आई थी, और बहुत ही एक अलग सी, एक डिफरेंट इनकी जोड़ी जो है वो लगती है। और ये फिल्म भी बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि इस फिल्म में जो कहानी थी, जो स्टोरी लाइन थी और जो डायलॉग्स थे वो अपने आप में बेहतरीन थे। निर्देश

करण जौहर ने इस फिल्म को बनाया था। और साथ ही अगर बात की जाए इस फिल्म में अभिनय की तो रणवीर कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ साथ नजर आई थी अनुष्का शर्मा भी इस फिल्म में। और फिल्म के जो गीत हैं उसे प्रीतम ने सजाया था संगीत से। और साथ ही साथ इस फिल्म के सभी तराने सभी गीत बड़े ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले थे। 50 करोड़ की बजट में बनी ये फिल्म कमा लेती है तकरीबन 240 करोड़ रुपए, यानी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा इसने किया कलेक्शन। 28 अक्टूबर 2016 को ये फिल्म होती है रिलीज दिवाली के त्यौहार के समय। और फिर जो इस फिल्म के जो गीत थे वो तो बेहतरीन थे ही, इसके जिनके बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और अरिजीत सिंह ने मैक्सिमम इस फिल्म में गीत जो है वो गाए थे। और इस फिल्म के साथ साथ रिलीज हुई थी फिल्म शिवाय भी एकदम एक ही साथ। तो दोस्तों आपको बताएं कि ये जो फिल्म थी ऐ दिल है मुश्किल, ये एक अलग स्टोरी लाइन जो है उसे लेकर आगे बढ़ती है, जहाँ पर दोस्ती और प्रेम की बातें जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। और उस फिल्म का एक ऐसा डायलॉग है जो सच में बहुत ही बेहतरीन है, और वो डायलॉग है कि दोस्ती जो है वो ज़्यादा सुकून पहुँचाती है। जी हाँ, प्यार में जुनून है और दोस्ती में सुकून है, ये डायलॉग सभी के दिलों को बेहद बेहद पसंद आया, सभी के दिलों पर एक अपना जो अपनी छाप जो है वो छोड़ जाता है। दोस्तों इस फिल्म के साथ ही रिलीज हुई थी अजय देवगन की फिल्म शिवाय भी। जी हाँ, सेम डे पर सेम एक ही समय पर ये फिल्म रिलीज होती है। और इस फिल्म ने भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस का। आपको बता दें कि 100 करोड़ की बजट में ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म ने 171 करोड़ के करीब का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। फिल्म का निर्देशन किया था अजय देवगन ने। इसके अलावा आपको बता दें कि अजय देवगन के अतिरिक्त इस फिल्म में नजर आई थी सयेशा, एरिका कौर और वीर दास भी इस फिल्म में नजर आते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो फिल्म थी इस फिल्म के गीतों को भी पसंद किया गया था। मिथुन ने इस फिल्म के गीतों को संगीतबद्ध किया था। साथ ही आपको बता दें कि ये जो फिल्म थी इसके कुछ गीत तो बहुत ज़्यादा हिट हुए थे, तो उन्हीं में से एक गीत आप सभी के लिए पेश है। आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकल योर्स। फिलहाल आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का ये अगला तराना, फिल्म का नाम शिवाय।

फिल्म कसूर से आप सुन रहे थे इस गीत को 107 FM रेनबो पर। दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स के इस चैनल पर आप सभी के लिए बेहतरीन गीतों के साथ साथ कुछ फिल्म से रिलेटेड बातें भी जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, फिलहाल अगली फिल्म के बारे में आपको बता दूं, फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जी हाँ, वही फिल्म जिसमें ऋतिक रोशन, करीना कपूर, फरहान अख्तर और उनके साथ बहुत सारे और भी एक्टर्स जो है वो नजर आते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ उस फिल्म की जिसने हमारी जिंदगी में कहीं कहीं कहीं ना कहीं कुछ कुछ जो सोच है, जो विचार है, उन्हें बदलने की कोशिश की। अभय देओल इस फिल्म में नजर आए थे कबीर दीवान के रूप में, साथ ही फरहान अख्तर इमरान कुरैशी के रूप में नजर आए थे। ऋतिक रोशन के कैरेक्टर का नाम था अर्जुन और साथ ही करीना कपूर नजर आई थी लैला के रूप में। साथ ही इस फिल्म में काल्की भी थी, काल्की नताशा के रूप में थी और साथ ही नसरुद्दीन शाह सलमान के किरदार में नजर आए थे और दीप्ति नवल भी इस फिल्म का हिस्सा थी। तो दोस्तों, आपको बताएं कि ये जो फिल्म है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म में कई सारी ऐसी बातें हमने सीखी कि कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को अगर लेट गो करते हैं, कुछ चीज़ों को अगर जाने देते हैं और जहाँ हैं, जिस समय, जिस वक्त, जो कुछ भी है हमारे पास, उसी का अगर मज़ा लेते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन बन सकती है। आपको बता दें कि ज़ोया अख्तर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा था, साथ ही डायलॉग्स जो हैं वो फरहान अख्तर के थे। इसके अलावा आपको बता दें कि 2011 में ये फिल्म आई थी, 45 करोड़ की बजट की ये फिल्म बनी थी और साथ ही बॉक्स ऑफिस अप्रोक्स कलेक्शन जो था इनका 153 यानी कि 153 करोड़ का था। फिल्म के गीत बहुत ही बेहतरीन थे और उस फिल्म से एक बहुत ही खूबसूरत तराना है, जो तराना है अल्यासा मेंडोसा के साथ साथ मोहित चौहान की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से ये अगला तराना 107 FM रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स पर कार्यक्रम छायालोक में आज के सेगमेंट जाने अनजाने में।

दोस्तों अभी अभी आप सुन रहे थे फिल्म युवराज से ये गीत, और युवराज फिल्म के इस गीत में जो आवाज़ थी वो थी बेनी दयाल, श्रेया घोषाल और साथ ही A.R. रहमान की। फिल्म युवराज जो है इसके विषय में आपको बता दूँ, साल 2008 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा कमाल नहीं कर पाई थी। और आप सभी को बता दें कि स्टार स्टडेड फिल्म थी, बहुत सारे जो अभिनेता हैं वो इस फिल्म में नजर आए थे, जैसे कि सलमान खान, कटरीना कैफ, अनिल कपूर, जायद खान, सभी इस फिल्म में थे। सुभाष घई के डायरेक्शन में बनी थी ये फिल्म, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने ज़्यादा कमाल जो है दिखाने में अपनी नाकामयाबी जो है उसको जाहिर किया। और आपको बता दें कि ये जो फिल्म थी, इस फिल्म में जो म्यूज़िक था, जो धुन थी, वो A.R. रहमान की थी। 48 करोड़ की बजट में ये फिल्म बनती है और इस फिल्म ने 31 से 32 करोड़ का तकरीबन बिजनेस किया। लेकिन इस फिल्म के जो गीत थे इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, इन्हें लोगों ने पसंद भी किया और आज भी सुनते हैं। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा हिट नहीं होती है, लेकिन फिर भी अपने गीतों के ज़रिए वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में अपनी जगह बनाई रखती है। तो दोस्तों आपको बता दें, ऐसी एक और फिल्म थी कुकू कोहली की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म, जिसमें लीड एक्टर के तौर पर थे करण नाथ, जीविधा शर्मा, रजत बेदी और आदित्य पंचोली। मैं फिल्म के का नाम बताऊं आपको कि ये फिल्म जो है एक तो 4.25 करोड़ में बनती है और 11 करोड़ के करीब का इसने बिजनेस किया था। फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना। ये फिल्म आई थी साल 2002 में। फिल्म जो थी रोमांटिक थी, एक्शन

भी था इसमें और थ्रिलर भी थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म बहुत ज्यादा जो है बिजनेस नहीं कर पाई। लेकिन आपको बताएं कि इस फिल्म के गीत जो है वो बहुत ज्यादा हिट हुए, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किए थे।

दोस्तों फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है कि अब से कुछ ही देर में हमें लेना है न्यूज ब्रेक, लेकिन न्यूज ब्रेक पर जाने से पहले बेनी दयाल के साथ शर्ली सेटला की आवाज में ये गीत सुनते सुनते हम चलेंगे न्यूज ब्रेक पर।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: जाने अनजाने

दोस्तों, न्यूज ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम जिसका नाम है छायालोक। और छायालोक में आज का जो सेगमेंट है, जी हाँ, सेगमेंट यानी कि जाने अनजाने लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका। और दोस्तों, फिलहाल आप सभी के लिए आज का जो पहला गीत था ये था चिन्मयी श्रीपद के साथ गोपी सुंदर की आवाज में। और एक बार फिर से यानी दूसरा घंटा जो है वो शुरू हो चुका है कार्यक्रम छायालोक जाने अनजाने का। और इस बार जो अगला गीत आप सुनेंगे ये है शान की आवाज में एक बेहतरीन तराना, फिल्म का नाम रहना है तेरे दिल में।

वेल फ्रेंड्स, अभी अभी आप सुन रहे थे मधुश्री के साथ ही आर रहमान की आवाज में फिल्म युवा का ये गीत, और इस गीत को आप सुन रहे थे कार्यक्रम छायलो के आज के सेगमेंट यानी कि जाने अनजाने में, जहां पर आपको बताते हैं हम कुछ खास बातें फिल्मों से जुड़ी हुई। तो अभी आप जो गीत सुन रहे थे फिल्म युवा से था। इस फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स ने एक साथ काम किया था। सबसे पहले तो बता दूं कि डायरेक्टर मणि रत्नम ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, साथ ही फिल्म को लिखा भी उन्होंने ही था। डायलॉग्स अनुराग कश्यप के थे, और साथ ही साथ इस फिल्म में नज़र आए थे अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबेरॉय, रानी मुखर्जी, करीना कपूर और ईशा देओल भी। और आपको बता दें 12 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी थी और 24 करोड़ से 25 करोड़ के करीब का इसने बजट जो है वो उसको वापस लिया, यानी कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसने किया। और आपको बता दें कि ये जो फिल्म थी, इस फिल्म की मैक्सिमम जो शूट है, शूटिंग वो यहीं यानी कि बंगाल में, कलकत्ते में ही हुई थी, और यहाँ के कुछ खास कॉलेजेस में और स्ट्रीट्स पर यहाँ की जो शूट है वो की गई थी। आपको बता दें कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म में बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उन्होंने, मतलब मल्टी स्टारर फिल्म थी, और साथ ही साथ इस फिल्म के गीतों को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, जिनमें से सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था इस गीत को जो अभी भी आप सुन रहे थे फिल्म युवा से। तो दोस्तों, ऐसे ही तरानों के नजराने हैं हमारे साथ, और आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकली। और फिलहाल आप सभी के लिए आज के कार्यक्रम का अगला तराना आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक में आज।

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

फिल्म एक पहेली लीला से आप सुन रहे थे ये गीत अब तो आ जा रे मोरे पिया। तुलसी कुमार के साथ आवाज आलम खान की और ऐश्वर्या मजुमदार की। फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर नजर आई थी सनी लियोन। और आपको बता दें कि ये पुनर्जन्म से रिलेटेड एक फिल्म थी, जुड़ी हुई एक फिल्म थी। और इस फिल्म में इस पुनर्जन्म को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया था। वैसे हमारे बॉलीवुड में जब भी कोई फिल्म किसी खास विषय को लेकर बनती है, किसी स्पेशल एक थीम को लेकर बनती है, तो फिर वो फिल्म अपने आप में अच्छी तो होती ही है। आपको बता दें कि अगला जो गीत आप सुनेंगे वो गीत भी बहुत ही बेहतरीन है। आपको बता दें फिल्म का नाम है कोई मिल गया। जी हाँ, फिल्म कोई मिल गया से आप सुनेंगे आज के कार्यक्रम का ये अगला तराना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में।

वेल फ्रेंड्स, अभिजीत के साथ श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे इस गीत को, फिल्म ओम शांति ओम से। और इस फिल्म में, इस गीत में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण नजर आए थे। दीपिका पादुकोण ने फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर हिंदी फिल्म में इसी फिल्म से किया था डेब्यू। और ये जो गीत था, ये खास तौर पर बनाया गया था सभी पुराने गीतों को ट्रिब्यूट देने के लिए। तो दोस्तों, फिल्म ओम शांति ओम के इस गीत के बाद अब समय है अंकित तिवारी की आवाज में फिल्म रॉय के इस गीत।

वेल फ्रेंड्स, इस गीत को सुनते सुनते स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है कि लें आपसे विदा। लेकिन आपको बता दें, फिल्म रॉय से आप ये गीत सुन रहे थे और अगला गीत है अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज़ में। फिल्म का नाम कयामत से कयामत तक। इस गीत को सुनते सुनते दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट देविका को इजाज़त। जल्दी ही होगी आपसे मुलाकात इसी वायदे के साथ। गुड नाइट, शब खैर, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, गर्मी में खुद को हाइड्रेटेड रखना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल ये गीत आप सभी के लिए। गुड नाइट।